संग न चाल तेरे तना ए जीव ए तन ए माया दौलत तेरे नाल नहीं जान एने तेरा साथ नहीं देना सह पंचम पातशाह फरमान करदे ने संग ना चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मन ए मूर्ख मन क्यों तू माया दे विच उरजिया वे क्यों मोह माया दे जंजाल विच पै गए अपनी सलीयत नू भुली बैठा है माया ने ते तेरे नाल ही नहीं जान संग न चालस तेरे तना लेंदा पद दुआए तू माया करे अकत क्यों बस हिस्सा ले बद दुआ ले के माया नू अकत्र कर रहे माया कठी ना कर ए ठीक है के माया तो बगैर गुजारा नहीं निर्दन आदर कोई ना दे लाख जतन करे कितना तरे निर्दन नू कोई आदर भी नहीं देंदा माया तो बिना गुजारा नहीं पर सैम आख दे ने जीव माया भी ओनी होवे जो तेनू परमेश्वर दा ना ना भुला दे तेनू वाहिगुरु भुल ना जावे माया भी ओनी कोई चाहिए गुजरायन जोगी सैम फरमान कर दे ने लैंदा बद दुआए तू माया करे अकत जिस माया नू तू अकत्र कर रहे उस माया तेरे नाल नहीं जाना संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना इस जुग में सोबा नाम की पर इंसान दे मन अंदर गलत फहमी पैदा होगी कहिंदा है माया दे नाल ही सब कुछ है जी माया ते जहान है जी माया ते साख संबंधी ने जी माया ते रिश्तेदार ने जी माया ने ते धियां पुत्र ने नहीं ते माया तो बिना कौन किसे नु कुछ समझदा है माया तो बिना कदर ही नहीं पर सैं फुरमान कर देने जीव ना इस युग में

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह करुणा का राग है। पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ठ रामकली सद अनंत साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषव अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगदे हन, बाकी स्वर शुद्ध हन। इस राग दे आरोह विच ऋषव स्वर दा त्याग कीता जांदा है। इस दे गाउण दा समां दिन दा पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दां दा कीर्तन सरवण करोगे ओ हन, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। यह गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है। इस नूं राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। इस नूं गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया

परम सत्कार योग गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी साध संगत अज सचखंड निवासी संत बाबा ईशर सिंह नानकसर वाले महापुरश आप जी उन्हां दी बरसी मना रहे हो। साधुआं दी याद विच सदा मेले लग्या करदे हन। ए बख्शियां रूहां हुंदियां हन। थोड़ा समा तुहाडे दर्शन करने ने ध्यान दे के सुनियो। जेड़े सुन लैणगे ओ भी साध संगत पछताउणगे, जेड़े ना सुनणगे ओ भी पछताउणगे। विचार ही करनी है दुनिया दे विच महापुरशां दा आउणा। साध संगत जिवें लोहा लोहे तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं हुंदा। बंतर दा फर्क हुंदा, लोहा भी लोहा हुंदा, लोहे तों बणियां चीजां भी लोहा हुंदियां ने। जिवें लक्कड़ तों बणियां चीजां ते लक्कड़ विच कोई फर्क नहीं होया करदा, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें पाणी ते पाणी तों बणियां लहरां विच फर्क नहीं हुंदा। प्रेमियो समुंदर लहर मारदा, छल मारदा समुंदर दी छल, फिर समुंदर दे विच ही खत्म हो जांदी है। जिवें समुंदर ते समुंदर दीयां लहरां विच कोई फर्क नहीं, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें सोना ते सोने तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, बंतर दा फर्क हुंदा, वेखण दा फर्क हुंदा। इवें बाबा ईशर सिंह ते अकाल पुरख च कोई फर्क नहीं सी, वेखण दा ही फर्क सी। प्रेमियो अज जिन्हां संतां दी बरसी मना रहे हो, याद मना रहे, बरसी तां असीं शरीर करके मनाउने आ भई संत चले गए। अग्ञानी पुरशां नूं आउंदा भी संत चले गए, ज्ञान नूं इन्ने साल हो गए। अज दास अखबार च पढ़ रहा सी 25 साल हो गए, शायद 25वीं बरसी है। कौन कहिंदा महापुरश चले गए? महापुरश तां हाजर नाजर बैठे ने। बोलिया रब तैथों वख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं। हुण अन्ने नूं किहड़ा आखे भी, जे अन्ने नूं कहीए भी दुनिया बड़ी सोहणी है, अन्ना जे ना मन्ने, अन्ना कहे दुनिया तां सोहणी है ही नहीं, उत्थे की दलील देईए? दुनिया ते फुल ते बड़े ने पर गुलाब दे नाल दी सुगंधी नहीं मिलदी। संसार ते महापुरश ते बड़े ने पर बाबा आनंद सिंह वर्गे बाबा, इस तों अगे चलो बाबा महाहरनाम सिंह, पुछो मंडी वाले महापुरश, उन्हां वर्गे बाबा ईशर सिंह जी, नानकसर वाले महापुरश, इन्हां वर्गे महापुरशां दा मिलना साध संगत जी बड़ी मुश्किल है। दुनिया ते लकड़ां ते बथेरियां ने पर बामण चंदन दी लकड़ी दा मिलना मुश्किल है। संसार ते पाणी ते बड़े ने पर गंगा जल दी महानता अपनी वखरी है। सारे पड़ो ना कोई होया ते ना किसे होना, मेरे प्रीतम वर्गा कोई रसना रह ना जाए। तेरे जिया नहीं जा।

अलग अलग हैं, पर जोत ओहा जुगत साई सह आया फेर पलती। पर एक गल किसे किसे ने समझी, किसे ने आख्या ए गुरु होर ओ गुरु होर, इस दी मर्यादा कुछ होर, उस गुरु दी मर्यादा कुछ होर। भाई गुरदास साहब जी कहना कहते ने इस भुलेखे विच ना रहियो, जे इस गलत फहमी विच रहा कि जो घर विच सुख साधन होण वह भी मुक जाणगे। गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ न आए। रिधियां सिद्धियां उन्हां दे घरां विचों जांदियां रहियां, जिन्हां ने आख्या ए गुरु कुछ होर ओ गुरु।

जिस घर दे विच चार भरा इकट्ठे होके नहीं बैठ सकते वह घर कदे भी आबाद नहीं हो सकता। अज इत्थे देखना करिए गुरमताशे मुताबक सिक्खी वाल देखना करिए सिक्खी दे पता नहीं कितने धड़े बन गए ने, पता नहीं कितनिया जातां विच वंड दिता है सिक्खी नूं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने सीस पांच प्यारियां तो पांच ले पर अमृत एक बख्शिया सी, वो कारण की सी? अमृत एक बख्शिया उसका कारण की सी कि मेरा खालसा जात पात तो मुक्त हो जावे। अज खालसा देहधारियां पाखंडियां तो छुटकारा पवा सके, जिवें कि अज आप ही देखण चाहुंदा है ये गुरुद्वारा रामगढ़ियां दा है, ये गुरुद्वारा शिंबियां दा है, ये गुरुद्वारा पापियां दा है, मतलब कि सिक्खी नूं असीं पता नहीं कितने धड़ियां दे विच वंड दित्ता है। सतगुरु बड़ा सुंदर उच्चारण करते हैं सिक्खी नूं धड़ियां विच वंडण वालियां।

आओ अज असीं अपने घर नूं देखना करिए। अज किसे गुरमुख नूं पुछ लिया जाए, भाई साहब जी तुसीं अमृत कित्थों छके आए, तां आम ही आवाज आउंदी है कि मैं बिबेकिया तों छके आए। कोई कहिंदा मैं टकसालियां तों छके आए, कोई कहिंदा मैं अकालियां तों छके आए। हालांकि सारे दलों के विच ही पंज प्यारे अमृत छकाउंदे हन, ते कलगीधर पातशाह जी का हुक्म ही उस दिन ही कलगीधर पातशाह जी ने हुक्म कर दिता सी, जिस दिन पांच प्यारे साज के अमृत तैयार किया सी, अते सरबत कौम नूं पांच प्यारियां नूं गुरु बना के वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला वाला खिताब दिता सी पांच प्यारियां नूं। पर अज सिखी बहुत ज्यादा भटक चुकी है। अज संसार नूं हो पता नहीं की गया, घर घर दे विच अग लगी हुई है, भयानक ज्वाला भटक रही है। भरा नूं भरा नहीं देखना चाहुंदा। दो मिनट वास्ते असीं सिखी दायरे तों बाहर जाइए। दस दा कहण तों भाव बाबरी मस्जिद अते राम जन्म भूमि बारे है। जिस वक्त यह भयानक युद्ध चल रहा सी, तां दास ने एक विचार आया मन दे विच कि शायद इस जदोजहद जां युद्ध दे विच गुरु नानक पातशाह किधर आ भी जाते, तो गुरु नानक पातशाह ने हिंदू अते मुसलमान नूं उपदेश पता की देना सी। क्या हिंदुओं मुसलमाना की मस्जिद वरान ना करियो, क्योंकि इस दे विच भी उही राम वसदा है जिसनूं तुसी मानदे हो, उस दे विच भी उही अल्लाह।

मग्न भई किंकनी सबद जनत काल खेल पाए जी काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके इस बम जान खान धरत ही चाहे सच साच सिर लिया।

ठार किवन किन्ही निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा किन्ही ग्रह तजवन खंड पाया किन्ही मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

हे मेरे मालिक, इस संसार विच कौन ऐसा व्यक्ति है जेड़ा तेरी आस तो बिना जी रहे है। तेरे दर करते सब ने आस लाई हुई है। किस लिए? क्योंकि आप सब दिया आसा पूरियां कर दे हो। जेड़ा भी इस दर ते आस लैके आंदा है उदी आस पूरी हुंदी है। एवें नहीं कोई इत्थे आंदा, हर किसी दे मन दी कोई ना कोई आस जरूर है, पर शायद आस उत्थे कीती जांदी है जिथे पूरी हुंदी हो। जिथे कोई पूरी ना करे उत्थे कोई आस नहीं रखदा। सानू आप ते आस है, एक गल वखरी है, आस भी कई प्रकार दी है। एक गल का ख्याल रखना, आस पक्की होवे कच्ची ना होवे। कर आसा

कर आसा आयो प्रभ मांगण। मैं बड़ी आस करके ही मेरे मालिक तेरे दर तो मंगण आया। कहिंदे ने मंगिया फरीद ने भी, बाबा फरीद ने मंगिया आस लाई। लिखो हुण आस कैसी है, साडे कलजुग जीवां दी तरह नहीं, साडी आस ते बहुत कच्ची है। दो चार वर्षी गुरु घर आउने आ, आस पूरी हो जाए ते ठीक है, पंजवे दिन गुरुद्वारे ही नहीं वड़दे, साडी आस ही नहीं पूरी हुई। नहीं भाई, इस दर ते ते हर किसे दी आस पूरी हुंदी है। हां एक गल जरूर होई है कि जिस वेले आस पूरी होनी सी उस दिन तू आया ही नहीं, उस दिन तू दर छड्ड के चला गया। इथे ते रोज आ, रोज हाजरी पर, पता नहीं किस वेले अरदास मंजूर हो जानी है। आस पक्की रख के बह, ए ना सोच के पूरी नहीं होई जरूर होवेगी। हुण बाबे फरीद दे किसे आस लाउनी है,

हे मालिक मैं ए आस ला के बैठा हे प्रभु मैनू कदों गल ना लावेगा, मैं तो इस आस विच बैठा वा हे प्रभु मैनू कदों गल ना लावेगा। हुण ए आस ते पूरी ताई हो सकती है कि मनुख पक्की आस रखे, कच्ची ना हो, इतनी पक्की आस।

स्थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगाध कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीण लई, ज्यों पानी पीण लगदा है तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यों इस मच्छी नूं चपट मारन लई बाज आया तां ओह भी मिर्ग दे सिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे है कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नाल। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी, जो निशाना मारिया मिर्गनी नूं तां मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी क्योंकि गर्भवती सी बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नूं दस्या, शिकारी नूं दस्या ते शिकारी ने झट तलवार कढ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता ते आप भी उसे वेले शरीर छड गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इन्हां चौहां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, ओ भी उथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखीं वेख रहे सन, ये शेर दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई। तिस वेले शिकारी ने खिच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नूं जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ,

कबीर लागे प्रीत सुजान स्यों, लागे प्रीत सुजान स्यों, बजे दोख हजार मोहे लागती ताला बेली, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय हवेली पानी।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताए। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कलयुग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज। और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावें जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावें सनकाद साध सिदादक मुन जन गावें अछल छला, गावें गुण तोम अटल मंडलोए। भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जो राजे जनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नूं माया तो निर्लेप रखिए। साथ संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरा दा जिक्र राजा जनक देव लोक नूं गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मां दे अनुसार भोग भोगदे हैं, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती। इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पा के, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया। ताई आखिया